0: Moirangthem Bisheshwana Khongpa Mendolin Tavire Akasbani Imphal Hauzigayu ki Pungnipan Tare Ngaihakki Matungda Delhi Dagi Rileda Hindi Amadi Ingraji Da Pau Amadi Silung Dagi Rileda Awang Nongpo ki Pau Phangbiragani
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृत

0: नियुक्ति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना पहली सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
2: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत

0: क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
1: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
2: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर

0: से खाड़ी में दो बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने की बात की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक दो मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया, वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच, सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा, बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू, ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satendra Jain and 5 others in Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile

हामोम बर्लिन सिंह सप मतमिशै तावीरे सैरिंग बसिंदी यनशेनबम कुंज बिहारी अमदी लाइश्रम रोमोला मथंगदामुक तावीसे हिदंगमयुम ओमिता देवी ने सप मतमिशै सैरिंगब थिंगबाईजम स्वरण कुमार असुमना सेहौरी सकलोन यांबा इवुंगोना हाग्नी।

आकाशवाणी इम्फाल अदोना ताबिरिबा सी मीटर चहुम गनी फुदास्मिक अमा किलोहर्स चनिपान गमरफुनी थोइदा संदोक चरिबा कंगला चैनल नी चैनल असगी अनि सुब थौरम परेंग संदोक पहुजरी थौरम ताबिरम लिबा पुमना मकपु तराम न ओक्चरी हौजिक नुमिदिंग बपुंग तरानी थोइ तारे मणिपुरी द पाव ताबिरसी

आकाशवाणी इम्फाल मोरा थी भाई पाव पाजरी अहम मरुब पाव एन आर सी निकोक थी थब की मांग केंद्र की लुचिब तक्सीब बीजेपी मणिपुर प्रदेश की मूर कांबू न्यू दिल्ली की दम इम्फाल थादोलगनी कैंपेन फॉर जज एंड फियर डिलिमिटेशन कौब जेनेरल स्ट्राइक मियां की मौसा की पुनसीद चौन अकाब थोले आसाम की येलो मिशन की स्वार्थ सक्तम ना सेंदन थम अनौब थौसल थौरानी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा लाथोरे झारखंड सरकार ने थबक लौनब की परीखा निफू मरी कक्तरे मणिपुर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजेंस एन आर सी मिकोक थी थबक अथुब चथनब बीजेपी मणिपुर प्रदेश की लुचिब बीजेपी की एम एल ए केंद्र की लुचिब तक्सीगदौरी पाव खरान हाई मीर कांबू खरा दिल्ली की दमक इम्फाल थादोलगनी इम्फाल थादोकदौरीब मियुसिंग की मनुंग दा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी सु ओइरिब दोल असिगी एन आर सी अमदी सेंसस कमिटी की कन्वेनर के शरद कुमार उरीपो केंद्र की एम एल ए खैराकुम रघुमणि सिंह लमलाई केंद्र की एम एल ए के एस एस इबोमचा वांगजिंग तेंथा की एम एल ए पाउनम ब्रोजेन थांग केंद्र की एम एल ए तोंब्रम रोबिंद्रोनी हयेंसु एम एल ए क्या दिल्ली चतना केंद्र की लुचिब हिरम की मांग वाफम क्या फोदों मिकोक थी थब चथद्री एन आर सी चथविनब तक्सीगदौरी मिकोक थी थब चथद्री एन आर सी हाँ पांथो हिरम की मांग सरकार की फिरेप लाथो है दाद कैंपेन फॉर जज एंड फियर डिलिमिटेशन जे एफ डी कौब पुंग निफू निपान की जेनेरल स्ट्राइक मियां की मौसा की पुनसीद चौना अकाब थोले आकाशवाणी पाने हाई लंबी गाड़ी चत की चांग नेमले जिला जिला फाउनब गाड़ी चेंद्रे कईथेल फमनद्रे दुकान सिंह थों लोले मफम क्या मियाम थोरक्तुना लंबी थिंबगी खोंजंग चंसिली दुकान थों हांगलंबसिंग खोंजंग लोयसिंगना थों थिंजिलहनखे ओलजिरी बाम रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स यूनियन सिंदुना नासी जिला असिगी कांग्रेस बाबन द वाकत मिफम फमली जिला असिगी तोंगान तोंगान बा मफमदगी लाखपा ड्राइवर सिंगना मिफम असिदा सरुक यारी एकोगी जिरी बाम पाउमिन हाय जिरी बाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना ड्राइवर सिंगदगी मरम जादना सेल लौबा तोयन मरम चादना चे चांग हंगबन चिंबब यानिंगदब फोंदोक्तना खोंजंग संसिनबनी असिगुंबा थवों असि मतुंगदा अमु हन्ना तौबिदनब यूनियन असिना अपील तौरी ड्राइवर सिंगना पामलिब दाबिसिंग असि फंगद्रिब फाव मखा ताना खोंजंग संसिनगनी स्टारिंग पाइदबगी खोंजंगसु चथगनी हाइरी हॉस्पिटल कोरिना कोर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम मणिपुर मिट दान तब कोर्निया ट्रांसप्लांट तब की मपांगल कंकट राज्य था की वर्कशॉप इम्फाल की पोरमपाट जेनिम्स हॉस्पिटल पांथोकनी नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पायरमेंट नेशनल हेल्थ मिशन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस सिंबनी मणिपुरी लोल भारत संविधान की निपान सुब सेड्यूल चंखीबा कुंथ्रा मंगा सुब मणिपुरी लोल की कुंतरुक हयेंग पांथोकनी कुमसी की थीम दी स्टेट सोंग सना लेबाक मणिपुर फॉर पीस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी हाइबसिनी कुमजा लिसिंग चमापन मफुद्रा निथोयद मणिपुरी लोल भारत की निपान सुब सेड्यूल चंखीबनी मणिपुरी लैंग्वेज डे स्टेट लेवल सेलिब्रेशन कमिटी ना जेन मणिपुर

0: दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
2: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
3: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जी
3: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में, विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
2: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
3: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
2: जी।
3: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं।
2: जी।
3: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया।
2: जी।
3: धीरे धीरे

0: शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगलौर शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
1: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
0: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द, और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
1: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
0: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
1: जी,
0: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
1: जी,
0: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
1: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
0: श्रोताओं, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
1: जी,
0: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा सुनते थे।
1: जी,
0: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
1: जी,
0: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
1: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
0: श्रोताओं, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
1: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
0: मार्केटिंग गुरु
1: या म्यूजिक गुरु।
0: श्रोताओं, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
1: जी, तो प्रिय श्रोताओं, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: जी
0: श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जल प्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कल कल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती हैं।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला है। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ। तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।

0: समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
1: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी। नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
0: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
2: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
3: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख में चौली खेलते हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
2: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
3: अच्छा,
0: वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
1: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
3: अरे ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है?
0: पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
2: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
1: वो खुशी खुशी बहने लगी।
3: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
1: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
0: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी। हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
1: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
3: मुझे तो बस आगे बढ़ना।

0: ओरा के।
1: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
0: हाँ अब मैं क्या करूं।
1: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
2: कूद जाओ ना।
0: कूद जाऊं?
2: डरो मत।
0: हाँ?
2: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
0: अच्छा, तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
1: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ, एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
3: फिर क्या था, भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते? उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
1: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
0: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं, और मैं बीमार हो जाती हूँ।
3: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
2: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
0: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
2: पुत्री तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
0: अच्छा,
2: तू रुकती तो हाँ? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
0: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूंगी।
3: चरैवेति, यही तो जीवन है।
1: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस

कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी। आलेख अजीत होरो। संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार वे विश्व की करोड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर।
1: हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूं ना तुम्हारी। शाबाश।
1: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
4: हेलन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया।
0: अचानक एक

0: दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सलिवन के मन में एक विचार आया।
1: अरे ये पानी का नल?
2: हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलेन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलेन, हेलेन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे, हाँ। अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ, पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। पानी। एक बार फिर कोशिश करो। हाँ,
3: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
0: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहाँ तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
1: मिसेस केलर
4: जी,
1: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है। संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं। आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
4: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: तुम अच्छा नो
1: शाबाश हेलेन। मिस सलीमन, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं?
2: अरे नहीं नहीं मिसेस,
1: मेरी बच्ची अब थोड़ा सुन सकती है और बोल भी सकती है। मिस
2: सलीमन, मिसेस केलर,
1: हेलेन बोल सकती है।

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आईं। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: '64 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: NCERT की तेंगवांगल इंजन पुथोक पथोरम उमंग ताबिरी। आकाशवाणी इम्फाल हौजिक लांथोकचरी मणिपुरी फिल्म इसई। लेप लैतना चोंगलिब मिहुननी एखोयगी मेट नाकों उरिब तारिब खंगब हाइबसिन खंगबद खुइदाब पामजब अम थेंगनरब मिकुप्त हाइफम खंगदना दंग दंग चोंगलक्तबरा नहाक्की मिहुनदी।

आकाशवाणी इम्फाल हौजे ताबिरसी लाइरिक हाइब थीब लाइरिक थीबीगदबना कौंथौजम प्रियोबर्ता हाइबीगदबना सगोलसेम नब मतांगना चैतन्य चरितामृतगी तराहुमदोय शुब अध्यायगी जगन्नाथन गुंडिचा मंदिरदा लेंगबगी मतांग ताबिरसी लाइरिक हाइब थीबा

ग्रंथगे अहोबदा जगत प्रमेष्टि गुरु श्री कृष्ण चैतन्य नभु हन हन खुरुम जय

0: सती करि समाधान।
1: मदुदि कर्म हैन नो हाइदा लीला शक्ति एवस इबेम सिना माना पामक पामक पा हाइबदि माना फोंथोंनिबो मतमदैदा महाप्रभु इबुओगी अनिंब खुदिमक छु मपुंग फाली
0: पूर्वी जैसे रास आदि लीला कैलासी वृंदा
1: ममांगैदा ब्रजबिना बोनगी मनुंगदा श्री कृष्णना मनाय सखी मंजूरी सखी सिंह लोना रास सानखी
0: अलौकिक लीला गौर करी खेने खेने
1: महाप्रभु ना खंब गमदब लीला कया मिकुप मिकुप खुदिंग सने
0: भक्त गोनो अनुभव नही जानी आ
1: प्रभु की अथुप लीला कया से मनाई भक्त सिंह खंगी अतोपन दी खंग गमदी
0: ये श्री भागवत शास्त्र तहारो प्रमाण
1: मददी श्रीमद भागवत की लाइरिकता श्री महाप्रभु लीला की खुदिमक्ष शास्त्र इधर लोना थम्बीरमी
0: हेतो वो महाप्रभु कौरी नित रंगे
1: मत असुम तौदना महाप्रभु इबोना जगन्नाथ की मांग हरावना जगो सारे।

0: गोविंद न सिंह
1: उदंत नित्यजो भी प्रभु रो है लो मोने
0: महाप्रभु बोन उदंत हरि बज गोय असे मसी सागे है न पुनि न लेपुरी
1: पेरो संग ए दिलो ए इम न बजोन
0: स्वरूप न सिंह लोइनरे हरगा न बजोन मी मापल
1: ईदस जोन प्रभु संगे गाय धायो
0: असुम तौरे हरग स्वरूप का कोनना मी तरा असे जगोय छाई छई छई
1: आर सोमो संपदाय हो सारी दिके रोहे गायो
0: संप्रदाय में आम से ना माइगे मरी छे मछी कोई कोई ना जगोय छी छार
1: दंड भोट करी प्रभु जुरी दुई हाथो
0: मतम से तो महाप्रभु इबो ना छई बा छोले बा संकीर्तन अदुदे दा वंशले अरग भक्ति दार
1: उद मुखे स्तुति करी देखी जग नाथो
0: जिंदगी इबो ना फो अगले हरग जग मोदो गी माई गई दहे ये ने माई जी नौकना ये ने अरग जब बंधुता स्तुति ज्ञात कचरे
1: भारतीय श्लोको नमो ब्राह्मण देवायो को ब्राह्मण हितायो जगत हितायो कृष्णायो गोविंदायो नमो नमो
0: श्लोक अमतंग अदु ब्रह्म नोजर अर्गे मतांग जिदा ब्राह्मण देवायो ब्राह्मण सिंह की थगल फम मोयबा लेमजन फम मोयरबा अदुगुमलाबा ब्राह्मण हितायो ब्राह्मण सिंह की फनन बगी खनबीबा जगत हितायो जगत संसार की फनन ब खनबीबा
1: श्री मुकुंद देव बाइकम जयति जयति देव देव की नंदना असो जयति जयति कृष्ण विष्णु वंश प्रतिभो

ताबिरे चैतन्य चरितामृत की तराहुम दुई शुभ अध्याय की जगन्नाथ ना गुंडीचा मंदिर लेंगबगी मतांगदा लाइरिक थी बहायबा लाइरिक थी बिखिबा कोंथाउजम प्रियोबर्त अमदी हाई बिखिबा सगोलसेम नब आकाशवाणी इम्फाल हौजेक नुआईदबा वेस्टर्न म्यूजिक की दमक तसी नजरी अदोंगे मरो लाइश्रम विजयादा।

0: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯥꯏꯅꯨ ꯄꯦꯝꯆꯥꯗ ꯃꯥꯏꯅꯨ ꯄꯦꯝꯆꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯀꯨꯝꯕꯤꯅꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯉꯧꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ꯫ ꯏꯪ 1990 ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 17ꯇ ꯅꯥꯒꯥꯃꯄꯥꯜ ꯄꯥꯎꯅꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯅꯔꯍꯔꯤ ꯁꯔꯃ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤ ꯏꯕꯦꯝꯆꯥ ꯗꯦꯕꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯨꯔꯖꯕꯣꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯒꯣꯄꯥꯜ ꯁꯅꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯏꯁꯅꯥꯝ ꯑꯃꯨꯕꯤ ꯁꯤꯡ, ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯑꯇꯣꯝꯕ ꯁꯤꯡ, ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯑꯀꯦ ꯁꯅꯥ ꯁꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯖꯒꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯇꯝꯂꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯂꯥꯞꯄꯤꯗꯒꯤ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯏꯁꯩꯁꯨ ꯇꯝꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯊꯦꯛ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯑꯚꯤꯅꯌꯁꯤꯡ ꯎꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯇꯛꯁꯤ ꯁꯣꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯏꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯥꯟꯗꯅ ꯅꯨꯡꯗ ꯅꯩꯗꯨꯅ ꯁꯥꯕ ꯖꯒꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯊꯦꯛꯅ ꯖꯒꯣꯏ ꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯕꯨ ꯇꯥꯎꯊꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯄꯟꯐꯝ ꯏꯂꯩ ꯂꯩꯇꯅ ꯔꯁꯒꯤ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜꯗ ꯀꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯗꯒꯤ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯑꯁꯤꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯗ ꯅꯥꯇ꯭ꯌ ꯃꯟꯗꯤꯔ, MDU, ꯔꯨꯞ ꯃꯍꯜ, ꯑꯥꯔꯤꯌꯥꯟ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ, ꯄꯦꯔꯥꯗꯥꯏꯁ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯅꯆꯤꯡꯕ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝ ꯂꯣꯂꯤꯇꯣ, ꯁ꯭ꯔꯤ ꯈꯣꯝꯗ꯭ꯔꯥꯝ ꯙꯅꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯁ꯭ꯔꯤ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯃꯌꯨꯔꯙ꯭ꯋꯖꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯪ 1992 ꯖꯄꯥꯟ ꯂꯥꯟꯗ ꯚꯣꯝ ꯇꯥꯔꯝꯗꯥꯏ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯂꯒ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯕꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕꯤꯅꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯉꯧꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ꯫ ꯁꯤꯇꯥ, ꯃꯥꯏꯅꯨ ꯄꯦꯝꯆꯥ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗ, ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯗ, ꯄꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤ, ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯤꯂꯥ ꯆꯅꯤꯔꯣꯝ ꯀꯨꯝꯗꯨꯅ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯈꯪꯈꯤ꯫ ꯏꯪ 1958ꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯝꯖꯔꯛꯐꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖ, ꯉꯁꯤꯅ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯖꯒꯣꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯖꯒꯣꯏꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯕꯟꯗꯅ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯝꯌꯥꯟꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯏꯁꯅꯥꯝ ꯑꯃꯨꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯟꯗꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯉꯧꯕꯤ ꯑꯅꯤꯗ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯖꯒꯣꯏꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯕꯟꯗꯅ ꯈꯟꯗꯤꯇꯥ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯔꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯠꯀꯤ ꯅ꯭ꯔꯤꯇ꯭ꯌ ꯚꯨꯁꯟ ꯃꯅꯥ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯂꯥ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯃꯅꯥ, ꯃꯥꯏꯁꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯂꯥ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯩꯇꯦꯡꯕꯤꯈꯤ꯫ ꯏꯪ 1935 ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯅꯥꯇꯛ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯊꯦꯛꯀꯤ ꯏꯆꯦꯜꯗꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯀꯪꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯒꯨꯔꯨ ꯂꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯉꯧꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ, ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯦꯅꯤ ꯀꯣꯡꯈꯥꯝ, ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯒꯤ ꯄꯨꯡ 2:15 ꯆꯠꯂꯤ, ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने

0: के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: The investment story.
2: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में एक डॉलर के निवेश पर करीब 3.6 डॉलर की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
4: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पर्टी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4th भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता

0: आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल करें, जिसमें ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष डॉ. के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय DNA और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 500,000 रुपए से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। IMD ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है।

0: प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर प्रसारित फौज भाइयों के मनोरंजन पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

फौज भाइयों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत में प्रस्तुत है ये पहला नगमा। राजी फिल्म से ये गीत है, हर्षदीप कौर, विभा शरफ और शंकर महादेवन की आवाजों में, और साथ में एकत्रित आवाजों में रवि मिश्रा और अरशद मोहम्मद। गीतकार गुलजार और इस गीत को अपना संगीत प्रदान किया शंकर एहसान लॉय ने।

कार्यक्रम की ये अगली पेशकश रहेगा फिल्म दबंग 3 से, जिसके निर्देशक हैं प्रभुदेवा और इसमें नजर आए थे सलमान खान के साथ सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान और साई मंजरेकर। गीत के लेखक समीर अंजान और संगीतकार साजिद बाजी।

ये गीत था सलमान अली और मुस्कान की आवाज़ों में। कार्यक्रम का ये अगला गीत है महाराज फिल्म से, जो आई थी यशराज फिल्म्स के बैनर तले। कौशल मुनीर की रचना और सोहेल सेन द्वारा संगीत है और इसकी गायन में आवाज़ है मोनाली ठाकुर की। फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा और निर्माता आदित्य चोपड़ा।

ये प्रसारण है आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल द्वारा और आप सुन रहे फौज भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में फिल्म संगीत। ये अगला गीत है आहिस्ता फिल्म से, अविनाश तिवारी और तृप्ति दिमरी की अभिनय में ये फिल्म है। गीत में आवाज अरिजीत सिंह और जोनिता गांधी की है। गीत की रचना इरशाद कामिल द्वारा और नीलाद्री कुमार की संगीत।

ये था एक गीत फिल्म लैला मजनू से। कार्यक्रम की अगली पेशकश में सुनिएगा फिल्म सैयारा से। इरशाद कामिल की रचना पर लिखी गई ये गीत है, जिस पर अपने संगीत से सवारा तनिष्क बागची, फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी। गीत में आवाज़ फहीम अब्दुल्ला की है और इस फिल्म में नज़र आए थे अहान पांडे के साथ अनीत पड्डा। फिल्म के निर्देशक मोहित सूरी और निर्माता अक्षय वेधानी।

फौज भाइयों के लिए। कार्यक्रम में ये अगला गीत है, मैं वापस आऊंगा, इस फिल्म से। सुनते हैं दीपाली सहाय की आवाज़ में ये गीत, इशाद कामिल की रचना पर और एआर रहमान द्वारा संगीत। इम्तियाज़ अली के निर्देशन में ये बनी फिल्म है, जिसमें नज़र आए थे दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रायना और सरवरी।

आकाश फनी फाउ चो तेली चोमदाई संया रंदाई तातुवे पुमा वे शोजो सुतारे सोले ट्रिपिरी हाई मीडियम वेव मीटर ट्राइट सा रंदाई पॉइंट अली अला किलो हर्स ट्राइट चा राइचा हाई हिनुवे राया अजवे का ट्रिलो लेचे आकाश फनी फाउ अजवे का हाई रोन चोपिले गवर्नमेंट न्यू डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन हाई सुमवे ये सुम जुसो पालो लाइवा न्यू incentive scheme hai ali to pay ye ha hai mtsu su wa ji to su te mai ni hi ji pho ji pho pa ma mu cha su wa li kho to ri ve ge sai ngo lu lai ve wan we scheme han ni hai ta ko lai ve thu na hi ni thu awa su ta lai re ministry of petroleum and natural gas new paw bu new scheme han ni hai ji pho ma ye pa ma a tha la hi ni pipe natural gas new fe लिखो ची ही फे आवाज सोलो लाइवे वन वे रानो पपे ये अचु को ते ही जी तो सो ते माई न्यू ही चिपो क्रो अलिया लाड रानिया मंदाई न्यू फे डोमेस्टिक पीएनजी हाई फे आवाज सो अनु बुए चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा न्यू अदे असम वे बुचे माई वे जे शर वुलो लाइवा न्यू पुलिसी अच्छी ली अशा पपे policy hi lowa bunyu government new revenue circle rain dai hi chipom sori phapile yeso hi manya taralia mai phau atsu dei bu te tau hi shofe ko mai tau nu dei hai pa ma shobele ye hai ve vanu legislation ne ali hai shobile ra ade chief minister nu guwahati hi nu press conference

औजान दना चरे माबू यूं थोक बदी हे लंकेत भी अशुमना पंथव मपाना चरे ये दो दी नहा कनान लेखी चरे ये दो कनान लेखी वनो चरे ये दो थीरे हारी नगा चरे ये दो हंदूगे तरियत की पैसा नहा न पाव पैसा आदो पीरी हारी नगा तरियत की छिंजा पीरी हारी नगा चरे माबू हंदू वगी ये दना पंथव मपाई बुंगो सिंकु नहा ते लही वदो असाउ खांबी में हो नरी हारी नगा मम्मूम लाले मसाई भी मतो भी सिंग ने इंगी रग यावा मपाओ दो हाई रग लब मतम मतो पंथा वा पुक्पा केगे खोरी कथियन दास चरे माबु योन बबु चरे ले बे लाले बे मी सिंग तो कनागी मुंगो कनानो कहीनो करम नहंग तो रिबु चरे ले की बमी ये तो कनानो कहीनो खंजे दी फिमुओ मशेली फिमुओ म इली वांग थंग वांग ये तो पंथा वा मपा अपुक्पा सिंकु नहाते ले बता मम्मूम लाले मसाई भी मतो भी ने यावा मपाओ तो हंग लग लब मतम सिंकु नहाते ले बदो असाउ खाम भी मैं हूँ न तना सिंगु थांजिंग मरम कई उली हाई रगा सिंगु थांजिंग माबु शरी पंदो लोमी रगा सिंगु थांजिंग मागी मरम कई उली रगा सिंगु थांजिंग कोरे लाई मसी इमोम लाले ले चाय भी मने छावस चरे माबु शेत पा तंबनु पावे रे लांथिंग छाथिंग लांथिंग नरी हाई रगा याई भी मथुआई लो रगी नुबी वेरी हाई रगा सम्लांग अदु पारे हाई रे रगा केगे मोइरांग ले पाकी सना सुरो यांग भी मथक द सिंग गी था सिंकु नहा दे ले बना सिंगु थांजिंग मरम खई ओली हाई रे रगा सिंगु थांजिंग द शरी पंदु लोम नग लब मतम अशुमना मम्मूम लाले मसाई भी मथोई भी ये दुना मनाई सिनु असान भी सिंग ने येंगी हाई रगा सिनु असान भी मजाई भी मा सरे ये से नसी नुमिदांग वायरम ने मबुंगो तुन के मनाक ते सले हाई रगा सरे माबु थिलु तब यादरे सरे माबु थिलु रसी ये दना सरे फुरी लदु नाथ की उतुंग मनुंदा पिक न थुप सले आयर घाप सली ना क्यों तो उनको मम्मूम लालिन में शाही भी में थोई भी ना सही शोई ना पायरी हाईडी रगा लायर संगी लम्दम दा सरे माबु थिन बल्ला पा फजेइ दा ननाई ना वो कई द पासी की

0: आकाशवाणी इम्फाल हाउसिंग नुमिदांगी पुंग तरेर मखाई तारे मणिपुरी दा पाउ ताविरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल ngangbum ngan thoina pau pajari ahan badamar oiba pau mukhyamantri yumnam khemsana haidi lamdam segi artist singna shanti gi paujel sandoktuna amaga amaga nuksi chana na hingmina na bohona bada mateng pangbu gi tangai phadaba lei manipur da sana khona ba hena saukhar hena ba pandam da donor mantraloi na polo ground ahum la hena ba aya ba pire jfd na manipur da nrc taudana mikok thi ba yaroi haiba dabi taksin duna kauba pungni funi pan gi general strike ki ngasi nini san ba numita su miam gi mahusa gi punsi da kai ba thoki kendra gi ngaksel mantri rajnath singa japan gi ngaksel mantri sinjiro koizumi ga hayang new delhi da wari sanagani amasung kolkata gi new market ta leibo hotel amada mai horok pada gi miyoi mapan sire tarukna so open nang le hairi mukhyamantri yumnam khemsa na hairi lamdam sigi artist singna shanti gi paujel sandoktuna amaga amaga nuksi sana na hingmina na bohona bada mateng pangbu gi tangai phadaba lei mukhyamantri gi secretary atang si raija sida leiba tongan tongan ba art makhal singi artist singa mukhyamantri yumnam khemsan ga unaduna haujig oiriba raija sigi phibang gi matang da khana ki asigumba tanja asida yengthina bagi wakhal thadoktuna nuksi sana ba purakna bohona bada artist singi thaudang chawi mukhyamantri na makhata na hai phurup amagi miyoi khudingmakpo ekhoina lana ubadi sumloi raija sida english ngani kulumdoi gi me ahumda gi thorakhiba irang markta thokhiba thaudok ama ningsingladuna sri khemsa na hai irang kanna leiringai matamda henglep kendra gi mla lejamang haukipta churasanpur da leiba thabak suba miyoi chamukun ngakpi senbina bahaijakhi madugi matung ina sinmi sing adubu ngakpi senbiduna tekta kaidana imphal yaholakhi asigumba thaudok kya leiri maramasina phurup amagi miyoi khudingmakta lana ubagi mahutta aranba taubasing da miyeng changbana chungani haikhi national register of citizen gi matang da artist singna pukhalakpa wapham bu taramna ogladuna mukhyamantri na hai raija sida nrc chana han ba haibasi sarkar gi su apam bani mukhyamantri na hai
2: loina ba ki khala big brother gi big sister gi role do ai koi na lo ga ai koi community ama lak pati de iris kun gi ning do kham ba yata ya de sa te sa ba ga kun ji kun gi kulak pa ning thuna mi phada ba la ni noi thum bi ga lo ga sing la bi la phone la kilo bu ta ta ni sa la asan la bi ma sa ma madu da mai te sa ba ga kun ka le ba ku ki gi ka do ai phati ai ding am de sin ya
1: आर एंड कल्चर मंत्री खुराइजम लोकेन जाऊना विभाग असी मकोक थोंगबो ऑफिसियल सिंग सरुग याखिबा मिफम अदुदा राज्य असी मसक नायबा आर्टिस्ट सिंग नसु लमदम असी द तंगदु लेताबा पुरकनाबा मियाम द पाउजेल पीखी
3: मणिपुर से अखोय मियाम तंग पुजन बे दि लेब कंगलु कुथ्रा मंगा से अखोय खुदिमक्से मणिपुरी नी अखोय खुदिमक्से मणिपुरी नी नी हैबी वखन लुन ग लोइना ना अखोय कना ना कना कारु खायदो खाजिन तो ओय खतो गुजि तो बुदि लेप कान द अखोय नुसी सना ना कुमै हराउ तो द ना तोहा नो लीला तो द ना इसै सक्त ना तोहा तोहान ब अखोय खुदिमक्से मणिपुर गि द मक्त खल लगा मणिपुर ग खै कनबा हैबसे अंगसि द गि दि अखोय आर्टिस्ट मियाम सिंग गि ना अखोय अखोय ना पांगथो कद ब थबक सिंग द सुख्रोय छो द कि बमी ता हल लगनी है
1: मणिपुर दा साना खोनबा हेना साउखर हनबा पांदमदा डोनर मंत्रालयना पोलो ग्राउंड अहुम लहेनबा याबा पिरे मपाल कांगजेबुंगदा हाना लेरिबा पोलो ग्राउंड असिगि मथकता मार्जिंग अमासुंग पाउबितेकता सगोल कांगजे योखनबा पोलो ग्राउंड सेमगनबा याबा पिखिबनि खोंथांग असिना सगोल कांगजे योखनबा लमदमसिगि पोलो सानारोयसिंग ट्रेनिंग पिबा अमासुंग मणिपुरगि पोलो मसानाबु मालेमदा हेना मसकताक पंगमनबा खुदोंजाबा क्या फंगहलगनि लोइनाना थौरांग असिना मसाना असिगि इंटरनेशनल टूर्नामेंट क्या पांगथोकतुना सानारोयसिंग दा हेना खुदोंचाब पिरगनि हाइरि ओलजिरिबाम रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स युनियन सिन्दुनांगासि जिल्ला असिगि कांग्रेस भवन दा वाकन मिफम पांगथोखरे जिल्ला असिगि तोंगा तोंगान ब मफम दगि लाखप ड्राइवर सिंगना मिफम असिदा सरुग याखि एखोय गि जिरिबाम पाउमिन हाइ जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना ड्राइवर सिंग दगि मरम चादना सेल लौबा मसुंग तोइना मरम चादना से चांग हांगबना सिंगबबु यानिंग दा ब फोंदोकतना खोंजों चंगसिन बनि असिगुंबा थावंग असि मतुंग दा मुहना तौबिदना ब युनियन असिना अपील तौरि ड्राइवर सिंगना

ताबिक्री अनिसुबा मणिपुर फिल्म सेगी कुदोलदा मंगल सना फिल्म असदगी आरबिन सोइबम मदि पुष्पारानी गे पुनबा खोंजेलदनी इसे इसेगी सेरिंग मने नाउरियम दिने सैरांगबा टोनी अहिबमनी।

0: 那么忙。
1: 不得，不得，是没办法。我他那不逃避了，阿兄，你们这不得我还你？你
0: 们不得呀，都慢点来，应该是。
1: 阿杜不，你们他那不和那比罗开刀给妈爸弄不？
0: 那大爷的手机本后看后的来，妈妈弄不？आइने इचा सिंग अछे छमलक पद करी द लाल खिबनो खंगौ दरेन हे आइना मतम अमद आइने खनखी आइगी पांगल मयिंग तारक लब मतम द मखोय अममम न मपाइगी सनागी चैछु ओइदुन आइगी पांगल थौना हापकनी आइगी गंगलो ओइगनी हाइदुद
1: मोइबा
0: अदुबो अदुबो मखोयदी तोलोप चार चार सरकार की कर्मचारी अममम ओइदुन मतिक चाबा मी अममम ओर का तोकले आई छनागी जसुदी ओइदरे मखोय मतनसु
1: मोय बाबा
0: मछिबु मछिबु करी दे छोय कि बनो करम न लान कि बनो खंगौ दरे आई
1: परे आई छुम लेरबदी नाक तुम थौ हाय बयारर आई खंग मोय बाबा ऐसे लगे ऐसे ले मोय बाबा

0: बाजी खोई लाग पी रे काके पीरो बाजी
1: होय होय होय
0: सखी सोम द फन बी बाजी
1: कोई रेडी दे द लाग ल नि ने
2: इटा
3: काके पीरो काके पीरो
0: कई न हासी पु
1: इटा ngo
2: इटा
1: ngo शी न तर ने नहा नो मा एखोय खर शाक जरा म सा शे द ना हरम बतु पो
0: आ इबु भाम बता जे बाजी
1: पेरा इबु तोंबा ना पान करी म तो हाय द वर ने
2: इटा मखोय न खंग हरोय सुमदबुन इतो इसासिंगा अइगा खुदकत लेपना बवाफम मलालदना नखोय दाइजखिबा प्रोग्राम दो कैंसिल तोरगा अतो पथबकमा चतपतारे आ इतो पिकोयदा पावहर दोरक्ती हाइदुनाने वारो बिबयादरे आ इबोतोंबा
0: बाबा
2: नंगा मौगा सों सों सों लोशलोर सोलो ए नंग बाजी खोयगा वारिंग हाक्तंग सागेको
0: होय बाबा
1: सतकदब प्रोग्राम मदि लैमाने नखोयगिसे अदु कदाई द नोबा नंग सकतोरि छिबो
2: तो सुमदो बनि आइशे नसी दगी नते हौजिंग मक बारुनि सिंखोंग द लैबा ऑल इज होम दु द चरपतारे
1: अतु तु दि करितो बस तोरि बनंग दे
2: सुमदो बनि तो सिदा युम सिददि अंगांग सिंगि युम साबने इशुगी परखा मया नक्षि लपने अदुगा इबो तोम बसु मतम खरदंग क्वार्टर द लेतब यादि हाइब मताम लालबा आंगांग सिनदि सिलेबसु सिना क्वार्टर दु द लेरुसी हाइब नि आम कन्ना अदु द एने यादबा अदु दनि आइन ओलेज होम दु द लेजगे हाइन कन हाइब दगे हौजिक चनब हाइदना थौरांग तोरो लिबसिने
1: नंगि जे ओलेज होम द सन नब थौरांग निने
2: माने माने माने
1: अर्दुति नशा निपागा नमोंगुन दि करी हाइबा
2: आइन हाइजे खिबदुने अंगा सिंगने दि चपि खिनु चिलबछु चिन्ना क्वाटर अदुदा पुन लेरुसि हाइ नाम कन हाइबने याम खांगर पोने इशोने साखी
1: आदु पुन ब पोसैनि लांगलि छ्या
2: मारी
1: सिंसि सु पुदोरि
2: होय होय होय ए आदा छैरें वारें खरि इरेगा मतम लेन न ब पुगे तोबुनि दैतो
1: फोटो सिंसि सु पुदोरि फा
2: होय होय नसा नुपिगा आइगा लुहोंबगि फोटो ओदुनि अकादुदे थेलुगे दन तोबने आदु आइन लैदोब मफम अदुदा
0: बाबा ए पोसै सिंसे सुम होंदो ब होजरम लगे
2: चलो चलो होंदो होंदो होर होर ना फोटो ओदुनि पुखी गनु को कायला कनि
0: ओ बाबा
2: ग्लास की फ्रेम निना इपा पाइगे
0: होय बाबा
1: नाय खै तोगी इबो तोंबा नाय खो
0: बाजी करि हागे बाजी
1: करीनो न खोने तौरी छ हां करीनो न खोने तौरी छ
2: इतो बि आंगांग सिन न ने मफम दु लैरु न ब हाइबने ति हाइबने ऐन हाइजे ग्रे बदु दि
1: मसी हुजि छ मसा कन खप लेप ति ने से नेको इबो तोंबा
0: बाजी
1: मुन न तो बाजी वा खरा हाइ कि
4: थेनि तामो मतम से आयो खरे ऑफिस मतम सु यरो लनी
1: จ้าจ้าทุ่งนับตัวรู้แล้วบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ
4: 피범 엄마 숨 싸다바다기 숨
1: 너코이나 과달다 레이도리 뒷가리기
0: 숨도 이코이 집 세크레터리나 어덜마 톨럭바바지
1: 아도 과달도 되기 능이 오피스 파우셋버가 윤덕이 오피스 파우셋버가디 아까라마나 낙바
0: 아두기 부디 윤씨도 이셋뿐은 낙바 야메헤네도
4: 바지 바지 마시 뿜나 마가세 아이코이 이몽 마눈기 미요이싱 뿐나 다나라가 야나두나 렙나키바 와팜니네 바지
1: 그리 나쿵에코 마시 나쿠이 무이 와니 아이코 여르크누 신이네 비면 능기 와도
4: 다모 미나 티엥에 해먹다들 라오바 송꽃하다네
1: 아 이따
2: 이따오비
1: 마시 디와리시 팔자는 사는데 바이 아들에 이보 돈바
0: 바지
1: 가나다도 레이번 능기 내양바 아두가 벤글로르도 레이번 내양바 야이마 로이노 바오피코 능수 물렸다 나빠시 유머시 타독드는 쌓기 바따르브디네 힌콘세 나마무도 생토나시

ममुम लालिन मशाइबी मधुइबी मनाई शिनुआ चांबी अदुना अहिंग नुंथिन खाकतना निंगोंगी थांग का दुदा चरे पिसा चरे कम तोदना चरे पिसा तोदना लेरिंगे की मत पंथाउ मा पाइबुंगो चरे माबू मुक्तंगदी यिंगनिंग अदुबु ममुम लालिन मशाइबी मधुइबी मनाई शिनुआ चांबी अनिदुना चरे पिसा तमदुना लेरिंगे की मतमदा यिंग बसंबुसु हे हंगोय चरे ये से करम तो रग ये इंसे की पाल में नुंग द खंडन ले रींगे की मत्तम आई भी मई भी मा महा की तालु या तुम भी तो कोठो ये रगा लाओ मस्जिदी ऐ वा महाई की सिंखु न हाथे ले बतु ना महा की तालु या तुम भी तो कोठो ये रगा नमोम लाल नचाई भी मत थोई भी मनाई शिनुआ चांबी अनि ननि कोरो नुमि सिंगुम खुदिंगि सारि बसेरे यसे हंत ओ केगे मोराले पाकता उकाई फलुंग काप मतम दनि अइना सेरे फिदा नगे खंदुना सेरे माबु इनगे खलि अदु ननि नहांग ना चंगि आइदि रगा सेरे यसे अमुक्ति यिंग आइबुंगो सिंखु न हाते लही बगी आवाम पाहुदु तारु मतम दम हाकी तलुई अतुम भी दुना ममुम लालेन मसाई भी मगी चरे माबु शारी मम फम्मदु दा चंगशली रगा चरे माबु यिंग मसंग ममुम लालेन मसाई भी मतुई भी सेनु वचान भी अनि दुना ngai hak wa du na pu tharing ngi matam madu da pale mama tu mi du na sang sali hai ri ga sere ma bu yi ngu ba da sere ma ki phaje ba du hai ni ngai le ta na phaje khra ba du ngu ba sere ni nga nu thang gung na sak ta ba gi ma chak lai ji mai thak da tharu tham ba na chat ba gi ma chak singe le rang ka ya na pum pum chat ba gi ma chak ka ya du ye le ba sere phi gi phaje ba mu ma ta wa du u ba da सरे मागे मसक दु उ द पर पर पर थरो इरगा मनाओ इबुंगो मथं खन ब सिंखु न हाते लई बता सरे मागे मसक दु ताक पता सिंखु न हाते लई मदो बाय म पुनिंग खु जंग न पाम लु रबो निंगो नि थांग गा दु द संग इ हाइ रि रगा सरे माबु इ म मतम दा सरे य दु बाय म संग न खु दा की दु पलिए ममा तुमी य दु ना ममुम लालिन मशाई भी मत थोई भी की नाग द संग सली ये रगाई इमागी मुम लालिन भी माँ नंग न हद्दक सारे बस चरे भी ऐसे पंथाऊ न पाननी के ये मोरांग ले पाकी मेरा थार दे ये उरगलब मतम उकाई फलों का बदा चरे भिदान ने बदा चरे माबु इनकी हाई नी सरे माबु इनगी हाय अदुना ने सरे यसे पंथाउना पाननी खरथुना लुइसलु हाय पले ममा यहोवा म पाओ दु ताव मतम द ममुम लाले म शाय बी म थोई बी इमा लुइसन जरेगी हाय ना दु मखुमी दु हाय रे बसरे यसी दी ममुम लाले म शाय बी म थोई बी ना सिंगु थांगजिन पलेम नरी हाय दी रगा इबुंगो तोनी द मक्तनी येतना छावा अदुगुम लब सरे असुमना सरे माबु साधुन लेखिबा कोरो नमिनिनी हुमनी लैरि हाइदि रगाई बेमा सरे लुइरा ब्रा मुहांगि इमा लुइ गे दौरे खुम असुमना नमिनिनी हुमनी यमु लै सरे लुइरा ब्रा मुहांगि इमा सरे यसे साबु बुदि लुइ छल्ले अदुबु सरे यसि दि नहा फिदानी अन फिदान तबनी ना पंथौई पाने इन बदने सरे यसे फजरुई हाइदना नमोम लाले लैना सरे फुरे तुरे थरे सरे फुरे तुबबु ओइरे सरे पि इन बबु ओइरे हाइरे ब सरे यसे लुइरा ब्रा पंथौ न पाल पिरो हाइरे द पलि ममा तुमी यदुना ममुम लालिन म शाय बि म थुइ बि द यवा गे म पाउ दु हाइरे ग ल ब म तम म दु दा ममुम लालिन म शाय बि म

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, आज की शाम जरा अलग है। आज हम बात करेंगे उस एहसास की जिसे दुनिया ने अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने इसे प्यार कहा, किसी ने इश्क, किसी ने मोहब्बत, और किसी ने कहा तुम हो तो बस सब कुछ और खूबसूरत लगता है। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है मोहब्बत के नाम, इश्क के नाम और प्यार के नाम। उन लोगों के नाम जिनके साथ हम हैं, उनके नाम जिनसे हम दूर हैं, और उनके नाम जो कभी हमारी ज़िंदगी में थे लेकिन अब सिर्फ यादों में हैं, और उन लोगों के नाम भी जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, रोज़ सुनते हैं, लेकिन कभी उनसे ये कह नहीं पाते कि तुम मेरे लिए कितने ख़ास हो। तो आज की ये शाम दिल को थोड़ा सा आराम दीजिए, कुछ पुरानी यादों की खिड़की खोलिए और मेरे साथ चलिए मोहब्बत की उस सड़क पर जहाँ पर हर मोड़ पर एक कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो मोहब्बत के उस एहसास को खूबसूरती से हमारे सामने रखता है।

दोस्तों कहते हैं कि पहली मोहब्बत भूलना मुश्किल होता है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि पहली मोहब्बत सिर्फ किसी इंसान से नहीं होती। पहली मोहब्बत में हम पहली बार अपने अंदर के उस हिस्से से मिलते हैं जो किसी के लिए धड़कना सीखता है। पहली बार किसी के आने का इंतज़ार होता है, पहली बार फ़ोन की घंटी ज़रा ख़ास लगती है और पहली बार कोई नाम सुनकर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और पहली बार किसी के बाय कहने के बाद भी दिल कहता है या दिल चाहता है कि बातचीत थोड़ी और चलती रहे।

0: दोस्तों हाजिर होता हूं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगा, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शमीम है अभी आपके साथ। दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही एक चेहरा याद आता है, एक जगह याद आती है, एक शाम याद आती है, एक सड़क, एक बारिश और एक चाय की दुकान, या फिर किसी का वो कहना कि अपना ख्याल रखना। दोस्तों, यादें भी बड़ी अजीब होती हैं। वक्त गुजर जाता है, लोग बदल जाते हैं, शहर बदल जाते हैं, लेकिन एक धुन जब हमारे कानों में पड़ती है और हम फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं, शायद संगीत और मोहब्बत का रिश्ता इसीलिए इतना गहरा है। एक गीत हमारी पूरी कहानी कह देता है। आज का अगला गीत उन सभी श्रोताओं के लिए जिनके पास भी यदि कोई ऐसी याद है जिन्हें वो भूलना तो चाहते हैं लेकिन उनका दिल उसे संभाल कर संजो कर रखता है।

0: दोस्तों आज आपको कहानी सुनाता हूं इंतजार की। इंतजार सिर्फ घड़ी देखने का नाम नहीं है, इंतजार है किसी के संदेश का, किसी के फोन कॉल का, और किसी के मैं पहुंच गया हूं या मैं पहुंच गई हूं कहने का, किसी स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन की तरफ देखने का, किसी दरवाजे की घंटी सुनकर अचानक उठ जाने का, और कभी कभी एक आवाज सुनने का। मोहब्बत में इंतजार जितना लंबा होता है, मिलने की खुशी शायद उतनी ही गहरी होती जाती है। और अगर आज आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो ज़्यादा इंतज़ार मत कराइएगा। ये लीजिए वो गीत आपके तरफ यूं आ गया।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

अच्छा दोस्तों, क्या प्यार से पहले दोस्ती जरूरी है? शायद हाँ, क्योंकि दोस्ती में हम सामने वाले को बिना किसी दिखावे के देखते हैं, उसकी हंसी भी, उसका गुस्सा भी, उसकी कमियां भी और उसकी कमजोरियां भी। और फिर भी हम कहते हैं, ठीक है, तुम जैसे भी हो वैसे ही अच्छे हो, ठीक इस गीत की तरह।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादेव की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ

0: मंत्री उपस्थित रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों की उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर में अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम आज 206 रन पर आउट हो गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट छटके थे। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet today approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे. उद्यन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य आर्थिक समाचारों पर.
0: So benchmark domestic indices decline, Sensex falls over 300 points, Nifty settles below 24,100. Any attempt to manipulate the newly introduced closing auction session will be dealt with sternly, says SEBI's chairman Tohin Kanta Pandey. And global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख. सेंसेक्स में 300 से अधिक अंकों की सुस्ती और निफ्टी 24,100 अंक से नीचे आया. सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा, हाल ही में शुरू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में किसी भी तरह की हेराफेरी से सख्ती से निपटा जाएगा और पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया. निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप सूचकांक में आज 0.2% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप

0: सूचकांक आधा प्रतिशत नीचे आ गया। लगातार आज चौथा सत्र था जब सेंसेक्स में गिरावट देखी गई। वहीं निफ्टी सातवें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। पश्चिम एशिया में कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें कम होने से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ, जिसके कारण बाजार लाल निशान के साथ बंद हुआ। इससे पहले कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच बाजार की शुरुआत बहुत सुस्त रही और पूरे सत्र के दौरान दोनों मुख्य सूचकांक दबाव में रहे और बाजार में चौतरफा बिकवाली देखी गई।
1: The benchmark domestic equity indices ended in the negative territory today. The Sensex declined 326 points or 0.42% to close at 76,910. The Nifty lost 77 points or 0.32% to settle at 24,078. In the broader market, on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dipped 0.2%, while the small-cap 100 index fell 0.5%. The Sensex extended its losing streak for the fourth consecutive session, while the Nifty closed lower for the seventh straight day as fading hopes of a diplomatic breakthrough in West Asia weighed on investor sentiment. Earlier, the markets opened on a subdued note amid weak global cues. Both the benchmark indices remained under pressure throughout the session, with broad-based selling observed across the markets.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 21 के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा नुकसान वाली कंपनियों में पावर ग्रिड 2%, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टूब्रो 1.3% और आईटीसी में 1.2% की सुस्ती आई। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में 1.7%, एटर्नल में 1.3% और कोटक महिंद्रा बैंक में 1.2% का उछाल देखा गया।
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 24 out of 28 sectors edged downwards. Among the top underperformers, power decreased 1.7%, capital goods slipped 1.6%, and utilities lost 1.3%. In contrast, housing finance advanced 0.6%, focused IT as well as IT rose 0.3%, and mid-small private banks eked out a marginal gain. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,483 companies declined, 1,807 advanced, and 231 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ। उद्यन, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: आज लगातार चौथा सत्र हमने देखा जब सेंसेक्स में गिरावट आई, वहीं निफ्टी भी कारोबारी सातवें दिन गिरावट के साथ लगातार बंद हुआ। क्या कारण है जो मार्केट संभल नहीं पा रहा है और क्या लगता है कि इस सप्ताह में हमें कैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
2: देखिए, जैसे कि कई महीनों से मार्केट का जो मूड है वो मध्य पूर्व में जो संघर्ष चल रहा है और उससे जो तेल की आपूर्ति के ऊपर जो असर पड़ रहा है, जो लग रहा है उसके उन कच्चे तेलों का जो दाम, उससे जो इंडिकेशन लिया जा रहा है, संकेत लिए जा रहे हैं, उससे वो डिपेंड कर रहा है, मतलब वही इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है मार्केट मूवमेंट्स को। और अगर आप देखें पूरा साल जो है ना, अगर आप निफ्टी को 50 को देखें तो वो आपकी ये तकरीबन 24,500 पॉइंट की रेंज में वो घूम रहा है। वो जब मूड अच्छा होता है, संघर्ष के बारे में खबर तो रिलीफ मिली तो वो 500 के आसपास, 24,500 के पास, और जब ऐसी खबरें आती हैं जहां पे जैसे वो MOU हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, वो उसका उसकी मियाद पूरी हो गई, फिर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्लस वैश्विक बॉन्ड मार्केट्स में एक ये कहें कि अमेरिकी बॉन्ड मार्केट्स में जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो उसका एक इफेक्ट वहां पे जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है, जबरदस्त डाउनटर्न हुआ, उसका इफेक्ट इक्विटी मार्केट में भी हुआ है। तो ये कुछ चीजें कई बार रीइन्फोर्स कर जाती हैं और उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। बाकी क्या कच्चे तेल के दामों से हमारे आर्थिक जो तंत्र है, सिस्टम है, उसको उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम ज्यादातर ओवरवेलमिंग अमाउंट तो हम लोग आयात ही करते हैं, तो जब भी ऐसी खबर आएगी आप सबसे पहले आप देखेंगे करेंसी जो कि हमारा भारतीय रुपया है डॉलर के वनस्पत, उसके ऊपर दबाव पहले, उसके बाद ऑलमोस्ट इमीडिएटली इक्विटी मार्केट्स, और फिर आप बाकी जो दूसरे मार्केट्स है उस पर आप देख सकते हैं असर। तो ये एक मोटा मोटी चीज है, लार्जर जो फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। क्या इन

0: Obviously, people talk about asset allocation, that you need to be in equities, gold, and debt. That mix is,
1: Diversification,
0: yeah,
1: yeah.
0: you're getting back to the textbook. And how do you do it in for a retail investor? People like you and me, you can look at multi-asset allocation funds. And if you look at how they've been doing it every time period, 6 months, one year, 3 years, 2 years, you'll find them doing much better than even index funds.
1: All right.
0: So those things are coming back and they are actually showing. And typically, and during these periods, you get to know also which fund manager, which fund house, which scheme does well. So it's not about how you do well when the markets are doing well. It's also when the market downturn happens, men and the boys get separated.
1: All right. Very interesting point you make, Udayan, of the domestic investors. But let's talk of the foreign portfolio investors and the foreign institutional investors. After a long, long time, let's say after almost 6 months or even 8 months now, there have been a positive inflow from the FPIs and FIIs. And that is quite positive, of course, not manifesting into into what we are seeing in the Indian markets. But as well, if we see the primary market as well, not getting quite buoyed up, rather being very tepid, you're saying.
0: It's not such a bad thing, Nishit, because there have been these complaints that, you bring an IPO and it's exorbitantly priced. You need to keep something in the ta on the table for the smaller investors or the other investors, that these episodes are of founders and other large investors who had invested in initially of making money. That's a fair game. But in these kind of circumstances, maybe one good thing is IPOs is happening. If things are bad, IPOs wouldn't have happened. So again, I'm coming back to the resilience. If market people were not feeling excited about it, they wouldn't have come with the IPO, they would have postponed it. So those periods we have also seen. So that one thing is that it's looking okay, these people are coming in. But the pricing, I would argue, is likely to be much better. You won't find analysts complaining that it's unfairly priced or whatever, and those things are going to happen, and you'll also get key have a pipeline of these things, these kind of companies coming in.
2: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सीबी ने कहा है कि हाल ही में शुरू किए गए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सीएएस में किसी भी तरह की हेराफेरी और इसे बदनाम करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुंबई में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. श्री पांडे ने कहा कि पहले इस्तेमाल की जाने वाली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वीडब्ल्यूएपी व्यवस्था की तुलना में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के तहत संभावित हेरफेर का पता लगाना सेबी के लिए अधिक आसान है. उन्होंने कहा कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में बाजार सहभागियों, खासकर म्यूचुअल फंड और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. सेबी ने बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और हेरफेर की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से 3 अगस्त को क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत की थी. इस व्यवस्था के तहत कारोबार समाप्त होने के समय के आसपास एक निर्धारित अवधि में खरीद और बिक्री के आदेश लिए जाते हैं और उन्हें नीलामी प्रक्रिया के जरिए उनका मिलान किया जाता है. श्री पांडे ने यह भी कहा कि अब तक सीएएस में सेबी को किसी भी तरह की हेराफेरी के संकेत नहीं मिले हैं. उन्होंने इस नई व्यवस्था को बाजार के लिए एक बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि इसे आगे भी जारी रखा जाएगा. उदयन, एक नई शुरुआत जिस तरह से सेबी के माध्यम से की जा रही है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में या अभी की हम बात करें तो इसके क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं?
0: देखिए, ये बिल्कुल अलाइन कर रहे हैं. जो विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरे एक्सचेंज है, उनमें भी इस टाइप के प्रोसेसेस हैं, इस टाइप का सिस्टम है, तंत्र है, तो उनके साथ आप अलाइन कर रहे हैं. तो कोई कोई फंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई लार्ज इन्वेस्टर है जो वहां इन्वेस्ट करते हैं, उनको बेसिकली जब आप विश्व के साथ, तंत्र के साथ जोड़ रहे हैं, तो आपके सिस्टम्स हार्मोनियस होना पड़ता है. चाहे आप टैक्सेशन करें, चाहे आप एनी मनी लॉन्ड्रिंग के से जुड़े हुए जो रेगुलेशन है वो करें, या स्टॉक मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो अलाइन करें. और थ्रू आउट हमारे देश में हम लोगों ने कोशिश की है कि हम जुड़े रहें, कि जैसे दूसरे जगह में होता है, दूसरे देशों में होता है, दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है, वो जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करें. ये उन लाइन में है. जो इससे टीदिंग प्रॉब्लम, जैसे बच्चों के दांत जब निकलते हैं तब उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है।

0: तो ये वो वाले टीजिंग प्रॉब्लम सब पार्टिसिपेशन का इश्यू है. जब जैसे पैसे भागीदारी या पार्टिसिपेशन बढ़ती पड़ेगी आप पाएंगे कि वो नॉर्मलाइज हो रहा है. एंड ये कोई भी एक्सपर्ट होगा, कोई भी जो इसको देख इस पे नजर दौड़ाता है वो यही कहेगा कि ये ज्यादा हम चेयरमैन सेबी से एग्री करना पड़ेगा कि ज्यादा पारदर्शिता वाली सिस्टम है. क्योंकि वो आप उस सेशन में प्राइस डिस्कवरी हो रही है वनस्पति इसके की एवरेज निकाला जाए, वो पूरा सेशन प्राइस डिस्कवरी के लिए है जो आखिर में हो रहा है. तो वो उससे जो आपके पैसिव फंड्स हैं, ईटीएफ्स वगैरह हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, उनके लिए क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वो जितना बेहतर करेंगे उतना उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर होगा. तो उससे आप जो आप और हम जैसे निवेशक है वो जिसे ट्रैकिंग एरर बोलते हैं कि इंडेक्स से कितने दूर रहे, इंडेक्स तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ट्रैकिंग एरर जैसी चीजों में वो भी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. सिर्फ ये एफएनओ और दूसरे डेरिवेटिव्स प्लेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप और हम जैसे निवेशकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है.
1: उदयन, क्या ये इकोनॉमिक वैल्यूज को स्टेबिलिटी देने की भी एक कोशिश है जिस तरह से आरबीआई कर रहा है, खासतौर पर उस मामले में जहां पर हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं?
0: नहीं, ये विश्व के जो सिस्टम्स हैं, जैसे हम फैटका जो मनी लॉन्ड्रिंग के, आप देखते होंगे बैंक्स में आप फॉर्म भरना पड़ता है फैटका, वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, दूसरे जो चीज़ें हैं वो हम एक हर जगह में हम ग्लोबल सिस्टम सब सरकारों में उनके जो तंत्र हैं उनमें ताकि एक पारदर्शिता रहे, सिस्टम सिमिलर रहे. क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश जाएंगे उसका एक अलग सिस्टम करेंगे तो आपके लिए खर्चा बढ़ जाता है. तो ये हार्मोनाइज करने की वाली बात है.
1: आगे बढ़ते हैं. सरकार ने घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस की ये योजना 1 सितंबर से लागू होगी. इस पहल का उद्देश्य देशभर में घरों तक साफ, सुरक्षित और पाइप वाली सस्ती कुकिंग गैस पहुंचाना है. अभी देशभर में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है. मंत्रालय ने कहा कि पाइप वाली नेचुरल गैस घरों के लिए एलपीजी सिलेंडर और खाना पकाने के पारंपरिक ईंधन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित, साफ तथा सुविधाजनक विकल्प है. और अब एशियाई बाजारों की बात करें तो आज दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 5.8% का नुकसान देखा गया. जापान का निक्केई 225 3.2% नीचे आ गया. उदयन, आज दक्षिण कोरिया के बाजार में काफी गिरावट देखी गई, इसे आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए, वहां पे जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ गिने चुने स्टॉक्स की वजह से काफी हलचल मची हुई है. कुछ एक फंड्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक जैसे हाइनिक्स, एसके हाइनिक्स, उनके साथ जुड़े हुए हैं. तो जिस तरीके से उन्होंने फंड्स को, उस पर्टिकुलर फंड को, ईटीएफ को स्ट्रक्चर किया, तो वो वहाँ का उतार चढ़ाव के कारण भी कुछ और हैं और असर भी कुछ और हैं. और ये जब एआई रिलेटेड बुलिशनेस चल रही थी तो तब उस वो इस तरह एक हाई टाइड की तरह वो उन सारे बोर्ड्स को ऊपर लेके जा रही थी. अब जब जैसे ही वहाँ पे पेसिमिज्म आ जाएगा थोड़ा बहुत, जो कि कल आया, पिछले कुछ सत्रों से आ रहा है विश्व के मार्केट्स में, वेस्टर्न मार्केट्स में, तो आप पा रहे हैं कि साउथ कोरिया में भी असर हो रहा है. और वहाँ पे वायलेंटली इसलिए मूव कर रहे हैं और ज़्यादा शेल्वी से मूव कर रहे हैं क्योंकि उनके जो एआई रिलेटेड प्लेज हैं, जो स्टॉक्स हैं, वहाँ पे असर ज़्यादा देख रहे हैं.
2: राइट. And US President Donald Trump has delayed the planned 50% tariffs on Canadian imports worth $20 billion. The announcement came after the two countries reached a last-minute deal less than 2 hours before the sanctions were to go into effect. Canadian Prime Minister Mark Carney has said that the implementation of the tariffs has been postponed until the 21st of August. In a letter posted on social media post, Mr. Carney said, over the last number of weeks, Canada has engaged in intensive discussions with the United States to address outstanding trade issues and deliver greater certainty and real benefits for Canadians. And continuing, the United Arab Emirates has suspended all trade, commercial exchanges and financial transactions with Iran until further notice, citing regional tensions and concerns over threats to regional and international security. UAE Foreign Ministry Communications Director Afra Al-Hameli said the decision is aimed at protecting regional stability and maintaining the integrity of the international financial system in accordance with international law and global

0: standards. The announcement came after the UAE said its air defense systems detected two ballistic missiles launched from Iran towards the Gulf. However, Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai categorically rejected the United Arab Emirates' claim that Iran had launched a missile towards that country, calling it harmful to regional trust and security efforts. Despite that, Tehran has warned that Strait of Hormuz will remain closed until a peace agreement is reached with the United States. And moving on to crude now. The global crude oil prices rose to a three-week high today as tensions in the West Asia intensified. Brent crude was trading 0.5% up at $91.49 per barrel in the intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $85.50 per barrel when reports last came in.
1: उद्यन हम देख रहे हैं कि लगातार ये तीसरा सप्ताह है जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है. ये सोचा गया था कि शायद इतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है. कोई था नजर नहीं आ रही. आपको क्या लगता है कि अब कैसी परिस्थितियां हमारे सामने और आने वाली हैं?
2: देखिए, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता, क्योंकि 1/5 मतलब 20% जो तेल है विश्व का वो सप्लाई वहीं से निकलता है. और हमारे लिए, हमारे देश के लिए अगर देखें, वही इलाका है जो हमारे लिए सूट करता है, क्योंकि हमारे रिफाइनरीज हमारे पश्चिमी तटों में हैं, जो बड़े बड़े और आधुनिक रिफाइनरीज हैं. तो उनको वहाँ से सप्लाई, अगर आपूर्ति मिलती है, वहाँ पे काम होता है और फिर उसको भारत में या दूसरे देशों में भेजा जाता है, वो चाहिए होता है. अब दिक्कत यह, अगर आपूर्ति में प्रॉब्लम आएगी तो आप कहने को तो आप दुनिया के दूसरे कोने से तेल ला सकते हैं, पर एक तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत है, इंश्योरेंस, सब चीजों में असर पड़ जाता है. दूसरा है जो तेल वहां से आ रहा है उसमें का भी खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें भी बीमा का खर्चा बढ़ रहा है. तो और दूसरी जगह से आप लाते हैं तो वक्त ज्यादा लगता है, तो आपका जो पूरा सिस्टम था वो डिस्टर्ब हो जाता है. ऊपर से प्रेशर बढ़ता है, आपकी करेंसी पे प्रेशर बढ़ता है रुपए के ऊपर, तो चैलेंज तो बना रहेगा जब तक, क्योंकि हमें वो आयात करना ही है. और वो आप रातों रात आप ऑयल डिस्कवरी तो होगा नहीं, तो ये जरूर चैलेंज बना रहेगा. और हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर एक असर तो जरूर पड़ेगा शॉर्ट टर्म में.
1: आगे बढ़ते हैं. सोना 0.1% की मामूली गिरावट के साथ आज 1,53,868 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. और चांदी की बात करें तो 1.7% गिरकर 2,29,225 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. उद्यम जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
0: Thank you so very much, Udyan, for having joined us. And before we close, a reminder of the headlines once again. So benchmark domestic indices decline. Sensex falls over 300 points. Nifty settles below 24,100. Any attempt to manipulate the newly introduced closing auction session will be dealt with sternly, says SEBI's chairman Tohin Kant Pandey. And global crude oil prices rise as tensions in West Asia intensify. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मिंडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इसमें भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण में ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का

0: कार्य 24 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा, इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Union Cabinet yesterday approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Union Cabinet under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said, with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari yesterday said the government's foremost priority is to provide high-quality infrastructure while maintaining cost-effectiveness. He emphasized that there can be no compromise on the quality of infrastructure development. Mr. Gadkari was addressing the 4th edition of the Tunnels and Bridges Conference in New Delhi. He said his ministry would review the existing provisions governing subcontracting of highway works to ensure that contractual requirements are strictly adhered to and that responsibility for quality and timely execution remains clearly with the principal contractor. US Ambassador to India Sergio Gore yesterday described the Union Territory of Jammu and Kashmir as an important part of India and said the governments at the centre and in the region have taken significant steps to improve security in the Union Territory. The US envoy was talking to media after holding a meeting with Jammu and Kashmir Chief Minister Umar Abdullah at his residence in Srinagar. Chief Minister Umar Abdullah said the meeting focused on India-US relations and areas where the United States can engage with Jammu and Kashmir. Defense Secretary Rajesh Kumar Singh has concluded his two-day visit to Armenia. During the visit, he held bilateral meetings with Deputy Defense Minister of Armenia, Karen Brutyon, and First Deputy Defense Minister and Chief of General Staff of Armenia, Edward Arsyan. The Defense Ministry said that

समय हुआ है 12:11 और 6 सेकंड। ये समय है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम जिसका नाम है निशिगंधा का निशिगंधा, और मैं हूँ आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमेशा एक तरह लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत नगमे और खूबसूरत बातें, और उम्मीद करती हूँ कि ये सफ़र हमारा बहुत ही खूबसूरत रहेगा। और शुरुआत इन अल्फाज के साथ। छोटी सी परिभाषा है जीवन साथी की, छोटी सी परिभाषा है जीवन साथी की, तुम शब्द मैं अर्थ और तुम बिन मैं व्यर्थ।

तेरा साथ हो तो ये पतझड़ भी मेरे लिए बहार जैसा है। तेरा साथ हो तो ये पतझड़ भी मेरे लिए बहार जैसा है, और तेरा संग मिलना यकीन मानो मेरे लिए उपहार जैसा है।

बंद करूं आंखें तो नजर आते हो तुम, बंद करूं आंखें तो नजर आते हो तुम, धड़कन बनकर दिल में समाते हो तुम। फासले भले ही हों जितने हमारे दरमियां, फासले जितने भी हों हमारे दरमियां, पर हर पल महसूस होता है कि यहीं कहीं आसपास हो तुम।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जो दोस्त हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अंजू और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा।

आंखों में शिकायत और होठों पर खामोशी रखते हो। सच बताओ, यूं नाराज से क्यों लगते हो? हंस के बात कर लो कि दिल को सुकून आ जाए। तुम तो मेरी हर अधूरी दुआ की बंदगी लगते हो।

मेरी याद आने पर तेरा क्या हाल होता है बताओ ना मुझे, क्या मेरी तरह भी तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है? क्या तुम भी सब कुछ भूलकर मुस्कुरा देते हो या फिर मेरी कमी को तुम अपनी ही परछाई में ढूंढते हो?

छुपाए से भी नहीं छुपता तेरी इन आंखों का नूर, छुपाए से भी नहीं छुपता तेरी इन आंखों का नूर। ये जुल्फें तो बस एक बहाना है दीवाने को दीवाना करने के लिए।

हुस्न को चिलमन की ओर से छिपाने वाले, जरा सुन मेरी इन आंखों की दीवानगी तुझे इन पर्दों के पार भी कर देती है।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, कहीं जाइएगा मत। समाचारों के उस पार मिलूंगी आपको कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमीडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण में ये बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय सारणी में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का काम 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितम्बर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा

फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। नीदरलैंड्स के अम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय हुआ है 1:11 और 11 सेकेंड। मैं हूँ आपके साथ एक बार फिर से अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूँ गीत सुहाने। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ।

अधूरी है आसमां की चांदनी तुम्हारे बिना, और अधूरा है मेरा हर एक ख्वाब तुम्हारे बिना। जरा पास बैठो और निगाहें मिलाओ उस चांद से, कि उसे भी तो पता चले कौन है बेमिसाल तुम्हारे बिना।

जी चाहता है तुझे अपनी इन आंखों में छुपा लूं और पलकों को बंद करके इस जमाने से चुरा लूं, न देख सके कोई तुझे मेरे सिवा, इस कदर तुझे मैं अपनी रूह में बसा लूं।

तेरी आंखों के रंग ने रोक लिया मुझे, वरना हम तो सफर में थे। तेरी आंखों के रंग ने रोक लिया मुझे, वरना हम तो सफर में थे। बहक गए कदम वहीं पर जहां हम तेरी नजर के असर में थे। जमाने की सारी राहें भूल गए हम पल भर में ही, जब से कैद हुए हैं तुम्हारे इन आंखों के शहर में।

कैसे भूलूं उस बूंदों भरी रात को जब तुम मेरे साथ थे, कैसे भूलूं उस बूंदों भरी रात को जब तुम मेरे साथ थे। हवाओं में घुली मोहब्बत थी और हाथों में हमारे हाथ थे। अब तो जब भी बरसती है ये बारिश की, अब तो जब भी बरसती है ये सावन की बूंदें, दिल तड़प उठता है याद करके कि कभी हम भी एक दूसरे के पास थे।

इस खुले आसमान में ये चांद भी खोया खोया सा है आज। इस खुले आसमान में ये चांद भी खोया खोया सा है आज। लगता है इसे भी हमारी तरह किसी की याद ने सताया है आज।

दिल की कहानी कहां से शुरू और कहां खत्म हुई पता ही नहीं चला, जब मेरी हर सांस तेरी दीवानी हुई। शुरुआत तो हुई थी महज एक अजनबी मुलाकात से, और अब ये हर धड़कन पुरानी कहानी हुई।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर रात सुर में लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमिडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजपूत ने कहा, केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमरीका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन को ब्रिटेन के सैन्य समर्थन को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि रूसी क्षेत्र पर हमलों में ब्रिटिश मिसाइल बलों की सीधी भागीदारी युद्ध में सहभागिता के समान है। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2017

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 4 सेकंड। ये समय है रात सुरमई का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजु। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

कब प्यार हो जाए क्या पता, ये दिल कहाँ किसी की सुनता है। अजनबी रास्ता पर चलते चलते ये किसी को भी अपना चुनता है। ना पूछो

क्या जीना तेरे बिना, जब मेरी हर सांस में तू समाया है। इस खाली दिल को सिर्फ तेरी ही चाहत ने तो महकाया है। लोग मांगते होंगे लंबी उम्र की दुआएं, मैंने तो हर दुआ में सिर्फ तेरा संग ही पाया है।

जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है रात सुरमई और अंजू है आपके साथ। जानते हैं बहुत नाजुक होता है ये दिल, जरा सी बेरुखी से चटक जाता है और जमाना जिसे एक मामूली टुकड़ा समझकर पैरों से कुचल जाता है। तुम तो कह गए कि खुश रहना हमारे बिना भी, पर इस टूटे हुए दिल को कौन समझाए जो बस तुम पर ही ठहर जाता है।

हम बेजान से खड़े रहे और वो अपनी दुनिया बसाने चले गए। हम बेजान से खड़े रहे और वो अपनी दुनिया बसाने चले गए। हमारी आंखों के सामने हमारे ही ख्वाबों को जलाने चले गए। एक लफ्ज़ भी ना निकला हमारे कांपते होठों से उस वक्त जब वो मुस्कुराकर किसी और को अपना बनाने चले गए।

इत्तेफाक कहूँ या खुदा की मर्जी, इत्तेफाक कहूँ या खुदा की मर्जी, आज फिर से मिले हो इस मोड़ पर जहाँ कभी रास्ता खत्म हुआ था।

वैसे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद रहेंगे आपके साथ भारती कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुम्मीडी पुंडी गुदूर की 3री और 4थी लाइन, कटक पारादीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने, रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। मिजोरम की न्यायिक अधिकारी हेलियन डांगलियानी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जज बनने वाली दूसरी मिजो महिला हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स में आम्सटेल्फेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराई का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं और मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सबको। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की। रात की खामोशी में कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो बिना आहट दिल तक पहुँच जाते हैं। मोहब्बत भी शायद ऐसी ही है, ना कोई दस्तक ना कोई शोर, बस धीरे से आती है और दिल में अपना घर बना लेती है।

कभी कभी दिल को किसी वजह की तलाश नहीं होती, बस किसी अपने की याद ही काफी होती है। मन भी कितना मासूम है, दूर बैठे किसी खास इंसान को याद करके भी उसके करीब होने का एहसास पा लेता है।

जब दिल में मोहब्बत हो तो वही दुनिया कुछ ज़्यादा खूबसूरत लगती है। फूल वही होते हैं, चांद वही होता है, रात भी वही होती है, बस किसी अपने की मौजूदगी का एहसास हर चीज़ को खास बना देता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हमराही। हर दिल में कोई ना कोई खूबसूरत सपना ज़रूर होता है, किसी के साथ हंसने का, किसी के साथ ज़िंदगी के छोटे छोटे पल बांटने का। कुछ सपने आंखें बंद करने पर नहीं, बल्कि किसी खास इंसान को याद करने पर दिखाई देते हैं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हम राही। रात की तन्हाई में जब दुनिया सो जाती है तब दिल की आवाज़ कुछ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। कुछ चेहरे आँखों के सामने नहीं होते फिर भी उनकी याद दिल के सबसे करीब होती है।

मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रंग शायद वही है जिसमें कोई दवा नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, बस एक सच्चा एहसास होता है। किसी की मुस्कान याद आ जाए और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाए, इससे खूबसूरत इश्क और क्या होगा।

रात के इस पहर में जब शहर की रफ्तार थम सी गई है, तब दिल की दुनिया जाग रही है, कोई याद बनकर, कोई ख्वाब बनकर और कोई मोहब्बत बनकर। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, छोड़ के जा रही एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। मुलाकात होगी 4:10 पर प्रोग्राम अरुणिमा में। तब तक के लिए मैं ले रही हूँ अनुमति। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमिंडी पुंडी गुदुर की तीसरी और चौथी लाइन तथा

पारादीप की तीसरी और चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दोनों मंत्री मेक इन इंडिया ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षीय गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। बांग्लादेश में 35 साल बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कराया जा रहा है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। मिजोरम की न्यायिक अधिकारी हेलियन डांगलियानी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जज बनने वाली दूसरी मिजो महिला हैं। उनसे पहले जस्टिस मार्ली बैकुंग इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली मिजो महिला थी। हेलियन डांगलियानी फिलहाल आइजोल जिला अदालत में जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ ही नीदरलैंड्स के आम्सटेल्फेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त मजबूत की। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म साजन बिना सुहागन से मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार उषा खन्ना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म कोहरा से हेमंत कुमार की आवाज़ में, गीतकार कैफी आज़मी, संगीतकार हेमंत कुमार।

अभी आपने गीत सुना खट्टा मीठा से किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज में गीतकार गुलजार, संगीतकार राजेश रोशन। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म अजनबी से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज में गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म शेषनाग से मोहम्मद अजीज की आवाज़ में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

अभी आपने गीत सुना फिल्म बेटा से अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में, गीतकार समी, संगीतकार दिलीप सेन और समीर सेन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म मैं 16 बरस की से उदित नारायण की आवाज़ में, गीतकार अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने पहले छोड़कर जा रही हूँ आपको एक प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म आखिर क्यों का, मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। और जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल में 13,031 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का, 3rd एंड 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमुंडी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारदीप की 3री और 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर रेल मार्ग की वृद्धि होगी। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और

0: तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इससे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब इस महीने की 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। इन आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद 4 नवम्बर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। झारखंड में 26 दिनों से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें JPSC सिविल सर्विस और JSSC CGL भी शामिल है। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। सरकार के इस फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित हुई है। बांग्लादेश में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 दलों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला है। चुनाव दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में होगा। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। और अब खेल खबरें। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। उधर श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन पर सिमट गई। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में कुछ हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railway covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with a total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
2: 5 major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
3: Total 13,041 crore rupees ke projects aaj cabinet ne approve kiye.
1: Mr. Vaishnaw informed that the Cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590 crore rupees. Union Minister Kiran Rijiju has termed the claim as false that China

एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है भूर सुहानी। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की अनुराधा पोरपाल के इस भजन के साथ।